0: पाई सके.
1: बेस्ट विशेस सारा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच फॉर ओपनिंग अप एंड शेयरिंग योर पार्ट ऑफ लाइफ विद अस. थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, रियली अप्रिशिएट. नमस्ते.